0: ada deng mi jehlani painal aqwami music report terdada bunanama mi faharuke mi music report balalar mi hama adya khilaf wahaken aduike mi dani molu music ki abatus adu ahane chekan mihar mi bani sabitefa ad michael jackson king of pop maruita faner aharavre gine do sefawair mi hinga deha sabbi sonaharu enege music mi bani billboard chart takan emburi asa adi ei emme album enno inge to enege mashhur lavatakkama wa billie jean human nature adi beat it for the first loving effahara billboard hot 100 chart ga mihar esebai mi saali saharvi kina dosi album ikkam ve sama handan kollan chehe mege furi ham tafsil reporting emme first team mi wani taiyar kofa ema miha hisapu mi report
1: देहा 26 में 16 वी दुहु गे बिलबोर्ड चार्ट अप बला लयरो माइकल जैक्सन गे मशहूर एल्बम थ्रिलर मिवनी हॉट आरएनबी एंड हिप हॉप सॉन्ग्स चार्ट गे एवने अनिक्का वे सराफा निरुणता सालिस देहार वे फवा एल्बम में मिहा दुस फहुं अनिक्का वे चार्ट गे एवने इरमकी म्यूजिक की तारीख गलिबुनु वर बडु कामयाबी ए मेगे तुरुं एना गे मशहूर लवतन हिमेने नंबर 1 कलेक्शन वेस वनी ए चार्ट गे देवन मकाम होदाफा ಮಿಯಾಕು ಚಾಟುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿಯ ಗಣಕ್ಕಾ ವಿಸ್ರಸ್ಕಂ ಕುರಮ ಮಿದನಿ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್.

एवरेनी एवरेंगे दीन फूह फिलु में खम गय्याय खुड़िवरे खमगा हदा दुनिये गे दिरुलुं एवरें हेल्लुं तेर को फावा मी हुन्ने फह एवरें मिदवहा बद्दलवान खं हंदा नत्थाली फदें अदि तिमन रसकलागे आयत्तका देखुलु हदा उलुनु कमट्टका अदु तिमन रसकलागे एवरेंगे मतिं हंदु मनेति कुरब्बा हुशीमें।

0: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Dilehi efemo, film adi series bil ma shogreva ay hun terina genesteni.
2: Balala sales.
3: Nice job, kid.
4: Thanks. Captain, big fan of Spider-Man.
3: Yeah, we'll talk about it later.
5: Hey, Indraniya. Vare vepadati unnani.
1: Balalan sali film adi series takayku mifaharus fahi baddal kollane.
6: Well, good luck with your journey.
2: Balala sali.
7: Kom haftaa gives buda do humendur fau deej jahair. Repeat buraasprati do gere dihai jahair adi hukur do ge mendam bar jahair. हम एक अन्य नुवादी है के मेगाहर्ट्स टीवे ही एफएमओ।
8: कुलवर कुलंतेरी ना एक कुलंतेरी के वाह कता।
9: इंगे वाणे काम एक कम देंगना बुराकोंगे रातु कर बिया बरे नगड़ कोराना।
10: पोचे से हम बोलना है रो देमा वारो उफावे इट मोटिवेट्स मी।
8: आइलाइन कुलंतेरी ना में तो कुरा उम्मीद था।
11: क्या गंड का विषय कम बारे ऐनी में हर कुले विदा इंगे एक तरह के इंटरनेशनल
9: वरा फोकस रहें गेम्स कुले शे कुले इंगे बन हो
8: तब पातू गेम तक क्या कुगने स्तनी
12: स्पोर्ट्स बीट
8: हो मैं दो हो गेम इंदुरफा हो देख चहरो रिपीट अंगार दो हो गे रेडी है चहरो अधे बुदा दो हो गेम इंदमो पार चहरो

0: आजकल का प्यार कंफ्यूजिंग है, इसलिए कुछ चीज चाइनीज शेजवान मसाला डोसा, साला चेन्नई से चाइना सब कवर कर लिया लेकिन रहा कहीं का नहीं।
1: किसी के साथ तो मतलब प्यार तो वो होगा राइट?
0: पता कैसे चले? ये हार्ट बीट फास्ट हो जाना, नींद नहीं आना, भूख ना लगना, ये कैसे पता कि वो प्यार है कि गैस हो गई है?
2: मस्त पवन सा कटी पतंग सा छुड़ाए से यार का बदर मट्टू वरन खट्टू मुझे तुम्हें मार गया।
3: तू फुल पिंक लाइंस लिखा हुआ है, तुम एक एक, एक, एक और ट्राई कर लो।
1: तुम ट्राई कर लो ना, मेरा ब्लैडर खाली हो चुका है। इस बार भी नहीं रोकोगे मुझे?
4: अब क्या रोकने का फायदा, ना वो उम्र रही ना वो शहर रहा।
5: उम्र तो बस एक गिनती है परिमल।
6: तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना ये सब इंटू मिंटू करने का?
7: जी
6: देखो तुम करोगे तो मैं भी करूंगी।
7: मैं करूंगा तुम भी करोगी, पर मैंने मैंने किया तो नहीं है ना।
1: एटलीस्ट लुक एट मी ना व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू।
8: इंसान का इवोल्यूशन हो चुका है, कान से सुनते हैं आंख से नहीं।
9: किसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारने के लिए हर बार प्यार में पड़ना पड़ता है उसी एक इंसान के साथ।
1: You are a commitment phobic man child. डरते हो फट्टू हो।
10: अनुराग बासु के फिल्म तो का म्यूजिक की अवधि स्वर मुहिम दौरे अदा कुराय चका वैर मे फिल्म के म्यूजिक तैयार को दीपवाणी मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम लवतव गेलिंता संदीप श्रीवास्तव अनुराग शर्मा ನಿಲೇಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮಯೂರ್ ಪೂರಿ ಅದಿ ಅಮಿತಾ ಬಚರಿಯಾ ಲಿಯಫ ವಾಯರು ಗಾಯಕ್ಫದ ಮಶೂರ್ ಶಾಯಿರೊಂಗೆ ಲೆಂತವಸ್ ಹಿಮನಾಫವೇ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರೆಕ್ ದೆಬಯಕ ಬಹಾಲಾಗೆ ನೆರಿಫವಾಯರು ಏಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮನೆ ಜಮಾನಾ ಲಗೆ ದಿಲ್ಕಾ ಕಿಯಾ ಅದಿ ಓರ್ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಕಿತ್ನಿ ಖರೂಂ ಫದ ಲವತಕಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಜಜ್ಬಾತಕ ವರ ಬೊಡ ಕುಳೆ ಬೆಲುನ್ ತೆರಿಗೆ ಹಿತಕ ಕುಳೆಲಿ ಲವತಕೆ ಶೋಗೆ ಮಿಹಾಸಾಬೊಮ್ಮೆಗೆನಸ್ತೆನೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಹಿಮನಾಫವಾ ಜಮಾನಾ ಲಗೆ ಮಿಲ್ಲವಾ

0: Die Wehe FM. Nur die Ecke Megahertz.
1: Guest the Dialogue.
2: क्या बात करूं मैं तेरे से?
3: क्या हुआ उसके?
2: अरे कुछ नहीं हुआ, मेरी माँ।
3: तू कैसा है रे?
2: अरे तू कैसी है रे सफीना? तू मेरे को क्या बोली? तू दोबारा ये अल्टर पंती नहीं करेगी? फिर क्या जाके की तू? तू अंदर जाते जाते बच्चे कुछ समझ में आ रहा है तेरे को?
3: तू मेरा छोड़, तू अपना बोल।
2: क्या है मेरा क्या है कि मैं थक गया हूँ और मेरे से ये अभी नहीं होता है?
3: क्या क्या बोला तू? क्या नहीं होता तेरे से?
2: ये,
3: अरे ये क्या?
2: ये अपना जो भी है।
4: मी कौन फिल्म में कही मैंने डायलॉग है? मिसुवाल के जवाब फणवाणी पीएसए में आमे दोरे को बालाना साली शोया जवाब फणोम के सुंगड़िया की अंगार दो होगे मेंदम पार गड़ सु मिनट कम में हफ्ता एक स्कूरी एक गेंदा बालाना साली मिशो के गेनेस्ते केस्ते डायलॉग के एम में गिने सुवाल तो के जवाब रंगल कुरा बैवेरे का महा को इफ़ार नगा गुरा तुम खास हादिया एली बेने एम में गिने सुवाल के जवाब रंगल कुरा बैवेरे नगानी कोमे महे गिवस एम में फाहुशोगा
1: गेस्ट द डायलॉग